गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी दा आनंद मानिया है। असी आप जी दा ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करदे हां कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चियां नाल गल बात पंजाबी विच करदे हो तां आप धनता जो हो, जे कुछ कसर है तां अज तो इस पासे खास ध्यान दियो। बच्चियां पास पंजाबी विच गल बात करन दा समा केवल घर विच ही है, स्कूल विच, दोस्तां विच, घर दे नौकरां चाकरां नाल तां समा उनां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकनगे तां गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना तां इक पासे रिहा, ओह गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकनगे? गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़नगे? अपना जन्म किवें सफल कर सकनगे? हो सकदा है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे। असी तां उस दाते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हां। जे कुछ उनताई है तां ध्यान दियो ते ओ पूरी करो। आप जितनिया वध तो वध जवाना बच्चियां नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी तां सिखी दा मुढ अथवा फर्स्ट स्टेप है, सिखी दा धुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही तां कहा सी कि जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असी तां अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हां। जदों गुरु नानक देव जी दा प्रकाश होया तां मुगल राज दा समां सी।

हिंदी जनता कमजोर ते निटार हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम कातक वातावरण नूं पाप कीता ते बाणी विच फरमाया, कार कार मियां सब ना जियां बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नूं हलूना सी के तुसी अपना धर्म ईमान छड के मलेच्छां दियां मर्यादा अपना के कार कार मियां बने हुए हो ते अपनी बोली भी त्याग दिती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछानो, केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने होर सजना मित्रा नूं भी इह सुनेहा दे के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो ते पंजाबी बोलन ते

चार कौस हम श्रवण करो। पहला चार ताल है, फिर तीन ताल है, फिर दो ताल है, फिर एक ताल है।

एक ताल दो ताल हुण तीन ताल श्रवण कर लो नहीं जी दो ताल हो गया हुण तीन ताल जो प्रभ कीनो सो भल मान्यो इस मत साधु ते पाई

allí de Somme. एक श्रद्धालु दंपति गुरु का सिख और सिंघनी अमृत वेले जागदे हन, नितनेम करदे हन। वाहेगुरु ने बख्शिश कीती, सोना लाल बख्शिया उना दे घर। गुरु का सिख कहंदा पहला सतगुरां दे चरणा ते सुहा आईए, ये सफल हो जावे, मथा टिका आईए, उस मालक दा शुकराना कर आईए जिस मालक ने ए सोना लाल बख्शिया। क्योंकि सिफती गंड पवे दरबार, पुती गंड पवे संसार, मिठी मुराद बड़े सिदक दे नाल, बड़े प्यार दे नाल नितनेम करदे। जदों गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी दे चरणा विच पुजे, आओ करो दर्शन, अकाल तख्त ते आप विराजमान हन। जिधर वेखदे हन मानो मेरा दा मीह वस रिहा। जो कोई मन विच इच्छा करदा है उहदियां चोलियां भर रहे हन। ते जदों इस दंपति ने आके मत्था टिकाया इस बच्चे नूं, ते झट बच्चा शरीर त्याग गया, शरीर त्याग गया। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह इस बच्चे नूं आशीर्वाद दे के कहन लगे, भाई दबा दे हो इस, जो मालिक करता है भला करता है। उच्चारण करो श्री, जो वाहिगुरु करता है भला करता है। दबा दिता, बड़े निराश होके घर नूं आए, भाई गए सां खुशियां मानन, दुखां दियां जोलियां भर के आ गए। गुरु का सिख अपनी घरवाली नूं समझांदा है, पलिए पुरछे मालक जो करदा भला ही करदा, पता नहीं इस विच ही साडा कोई भला हो। सानू निशर्द नहीं होना चाहिदा, सिदक नहीं हारना चाहिदा, ये सारियां दातां ओदियां हन। वाहिगुरु ने बख्शिश कीती, अगले साल फिर सोना लाल बख्शिया। हुण घरवाली दा जी नहीं करदा के लै जावां, किते फिर ना शरीर त्याग जावे, पता नहीं की कारण है। पर गुरु के सिख ने आख्या, जिस बच्चे ने गुरु का दीदार नहीं कीता, गुरु ने जिस बच्चे नूं अपना नहीं बनाया, ओ साडा भी नहीं। इसलिए पहले गुरु दे चरणा ते नमस्कार करानी है। भागवाने तू मन नूं डोलाए मन ना कर, असी गुरु के बच्चे हां, ओ साडे माता पिता हन, ते माता पिता कदे भी अपने बच्चियां नाल वितकरा नहीं करिया करदे। प्यारी सात संगत, जदों मथा टिकाण लई आए, सतगुरां दे चरणा ते लिटाया, ए बच्चा भी शरीर त्याग गया। उच्चारण करो श्री, हुण तां बड़ा ही बैराग आया। पर धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह कहन लगे, इस नूं दबा दिओ, जप जी साहब दा पाठ करके ते दबा दिओ। जो मालक करदा चंगी करदा। बड़े निराश होए, पर एक पासे गुरु का सिदक भी है, भाई गुरु जो करदा भली करदा। प्यारी सात संगत, तीसरे साल भी निरंकार ने एक लाल इन्हां नूं बख्शिश कीता। हुण घरवाली कहंदी, मैं नहीं लै जाना इसनूं। गुरु का सिख कहन लगा, भागवाने एक गुरु दियां गुरु ही जानदा है। इस वास्ते असी गुरु के जीउंदे मोहे, जिथे किथे असी गुरु के हां, साडा तन मन धन परिवार सब गुरु का है। असी क्यों बेमुख होके मरी, क्यों बेमुख होके विचरीए। ते जदों आए सतगुरां दे चरणां ते नमस्कार कीती, सतगुरां ने अपना मेहर दा हथ इस बच्चे ते रखिया। सदा चिरंजीव रहो, सुख माणो, गुरु घर दी खुशियां माणो। ते गुरु का सिख कहिंदा, महाराज पहलियां नूं वी इह असीस दे देनी सी। तां धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह कहन लगे, परमेश्वर का हुक्म एवें सी, उन्हां दा जन्म मरण कटिया गया।
ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 25-26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕਲਜੇ ਨੂੰ ਛੇਕ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਮਰਨ 84 ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

जितने माई भाई बैठे हो सारे प्यार नाल रसना पवित्र करया करो। पोथियां सामने रखण दा एहो एक फायदा है, इंसान चंगी तरह बोल सकदा है। इसलिए सारे प्यार नाल करीबन सारी संगत ही पोथियां रखदी है, फिर पढ़दे क्यों नहीं। पढ़ो सारे, कोई रसना खाली ना रवे। आओ साहेब पंचम पातशाह जी दियां कैसियां ए प्यारियां तुकां ने, पढ़ो सारे।

जिन्ना चिर यह परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख के चरणों नाल जुड़िया है, मेरा खालसा यह मेरा ही रूप है। पर जदों ये भरमां विच वहमां विच पै गया, गुगे जठेरे मनन लग पिया, मड़ी मसाणी मनन लग पिया, इहदे मन विच द्वेष आ गई, इहनूं इह पता लग

कोई गरीब है, गरीबी घर विच एडी एडी है कि अपने मोढ़िया तो भी उची हो गई है। ये जो गोलक है, ये गुरु घर की जो माया है, ये इना गरीबा वास्ते, मजलूमा वास्ते, लंगर वास्ते, जो पीड़ित लोग हैं, ये सत्संग जीओ, ये जो गोलक है,

0: DM Music पेश कर देने शब्द गुरबाणी गुरु रामदास राखो सरनाई
1: गुरु रामदास राखो सरनाई
0: भाई किशन पाल सिंह जी दी रसपिन।

आदिगुरु इन में जुगाद गुरु इन में सतगुरु इन में श्री गुरुदेव इन में आदिगुरु इन में जुगाद गुरु इन में सतगुरु इन में श्री गुरुदेव इन में आदिगुरु इन में जुगाद गुरु इन में सतगुरु इन में श्री गुरुदेव इन में। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग, आई बाउ टू द इन्फिनिट क्रिएटर ओम, आई बाउ टू माई गुरुदेव, माई ब्यूटिफुल गुरु। आई इन्वोक द प्रोटेक्शन एंड द वाइब्रेशन ऑफ गुरु नानक आदि गुरु। I bow to the second Guru, Guru Angad. I bow to the third Guru, Guru Amar Das. And I bow to the fourth Guru, Guru Ram Das. And I create a seal of protection as I tune into the vibration of my Gurus. This is a way you can consciously set yourself, consciously present yourself, consciously surrender yourself. And what it does is it takes you out of the way so the Guru can just prevail through you in a very simple, clear channel.

गौड़ी चेती, शब्द भी गौड़ी चेती, श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच उसी राग विच ए शब्द उचार रहा है भगत जी ने, उपर सिरे लेख है गौड़ी चेती भगत कबीर जी दा।

इना विकारा तो किस तरह बचा मैनू नहीं पता। मोको बाह दे बीटला जिस तरह

जिस तरह कोई बच्चा रिड़दा होया किसे चीज नु पकड़दा। नामदेव जी ने अग विच हथ पाया ते मां गोना बाई

उस हरी ने बाकी इंसानों भी पैदा किया। तुहाडे विच भी हरी, उन्हां विच भी हरी, फिर क्यों जुलम करते। ये उपदेश सुनिया उन आदमखोरां ने नामदेव के चरणों से मत्था टेकिया और अगे तो तौबा की, असी हुण ये पैड़ा काम नहीं करांगे।

पर मैनू ते राम दे बराबर ही सोना चाहिए। जे दे सकदे हो तां जरूर दे। सेठ हंकार विच हसिया, तकड़ी मंगाई। तकड़ी दे एक पासे वो पत्ता पे है तुलसी दा जिदे उते राम लिखे है। ते सेठ ने हसदिया

शिवजी भगवान ने जदू अर्जुन दे नाल युद्ध किया तां छोटे दे रूप विच भज के उस जगह आए अर्जुन तो हार के और सामने पहाड़ से शिवजी भगवान छोटे दे रूप विच जिसनों हिंदी विच सांड कहंदे ने ओ दे रूप विच भजे आए ते ओ जड़ा पहाड़ सी

हे वाहिगुरू, हे अकाल पुरख, तू सारिया ते मेर कर, सारी सृष्टि ते मेर कर। तू मालक है, तू प्रतिपालक है, तू राखा है सबे जी समा, तू सारिया ते मेर कर। तू ईरखा, द्वेष, वैर, विरोध जो मन च अग लगी हुई है दूर कर, सारे अनु समत बख्श। जगत सड़ रहे है, अगा लगिया हुई ने, तू कृपा कर। तू मालक है, सारिया ते कृपा कर। जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार, जित दुआरे उभरे जिते लेहो ओबार। तू सारिया ते मेर कर, सारे तेरे ने, तू सारिया की कृपा कर। ये अरदास है कि अन्न पानी मुच उपाए, ये पदार्थ सारिया नू दे, सारिया की कृपा कर। दुख दलिद्र भन दर सारिया का दुख दूर कर, दलिद्र ये सब दूर कर। तू सारिया ते मेहर कर।

तीन चीजा इको जिया खंड आटा ते घ्यो तिने चीजा इको जिया इनू त्रिपावल की दे कहते जदों गुरु गुरु नानक साहब नूर शाह तारण गए ने ना जी जंतर मंत्र करन वाली उन्हूं यह उपदेश दिता सी वाहिगुरु नित नाम जपो देग तिहावल की करिए तिहावल की देग इनू कहते तिने चीजा इको जिया महाराज ने कहा कड़ा प्रसाद भी किवें बनाउणा सुन लै भाई

सहज खते लग को उठतावे त्रिप्त न आवे माया पाछे पाए अनक भोग बिखिया के करे न

तो हम तक की सुना है अपनी मन भी मत में त्याग दे। अगर अपने आप में सोचते कुछ कहने हो तो वो एक गलत कहानी है। फिर महाराज जी क्यों करिए, क्यों करिए? तो कहेंगे गुरु की मत तू लेह ए आने। साथ तुम गौर न सुनो, इसे शब्द महाराज जी ने वर्त्या है ए आने। तो आने शब्द जरा निके निके बच्चे बैठे ने उन्होंने वर्ते। सुखमी साहब जो महाराज जी ने उचारी जी तो सुखमी साहब जो ये लफज आने जरा उन्होंने निके जो है न्याणिया जो पांच सात साल की उम्र में सी ये शब्द उन्होंने लिखा थे। उन्होंने बेचारे भोले पालन के समझ नहीं थी आने। तो सियाने फिर आने कौन हैं? याने ओ हन जिन्हों के पास ज्ञानक नहीं है पर उन्होंने वहन है ज्ञान का। ये जो ग्रोन न्याणे हैं ना तो उन्होंने आता है ग्रोन न्याणे। जो ग्रो हो गए हैं लेकिन हम हाले न्याणे ही अपने मन में भी नहीं हम कि अभी हाले न्याणे हैं। वो तो कोई कोई गुरसिख अजिहा होंगे है जो आखे हम बार तू गुरु पिता है जो मत समझाए। तू गुरु पिता है अभी बालक हैं हाले। लेकिन कौन कौन प्यार है कि अभी बालक हैं? जब इंसान कहता मैं तुझे बच्चा समझ दो मैंने न्याणा समझ दो मेरे तौले आ गए हैं तो मैंने तुझे समझाने की कोशिश कर दो। जिस तरह के तौले आगे नाल अकल आती है वह तो कुछ संबंध ही नहीं उसके नाल। तो साथ संगत जी हूं तक आप जी ने यह सुनिया है गुरु बाबा जी का सुनेहा कि अपनी सारी मत अपनी सारी सियाणप क्योंकि साढ़े पास नहीं है छड़ दो। तो कहते हैं गुरु की मत तू ले आने आने गुरु की मत लै क्योंकि भगत बिना बहुत डूबे सियाने बहुत बड़े बड़े सियाने जोड़े हैं वो गुरु की मत तो बिना भगती नहीं आती। बिना भगती तो बहुत व्डे व्डे सियाने जो हम वो अपनी सियाणप के डुब जाते हैं अपनी सियाणप के डुब जाते हैं। इस करके प्रेम नाल आओ इस पंक्ति लगाओ उपरंत अगे चल रहे हैं।

कबीर साहब जी की बाणी भी एक पंक्ति बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि उन्होंने बहुत अजीब गल आखी, बड़ी अजीब गल आखी। कबीर साहब कहते हैं, गुरप्रसाद अकल कही अवर, इस लफ्ज़ को बहुत गौ नाल सुनना। कहते गुरु की कृपा के नाल मेरी अकल बदल गई है,

कबीर सब करे ने मैं ता गुलाम हां मैं ता ओदे घर दा नौकर हां ए हुण ओदी मर्जी है।

तू मैनू सलाम नहीं कीती। ते कबीर साहब फिर की कहंदे ने बादशाह दे मस्तक वल तकिया ते हंकार दिसिया ते नाले इउं कहिया

तू मेरे हरी दी समानता है नहीं कि मैं तेनू सलाम करा। ओदी बादशाही जुगो जुग अटाई।

छिपाई थाली वापस नहीं पहुंची। कबीर साहब पहले ही घर पहुंच गए। कबीर साहब दे श्रद्धालुआ ने बड़ी खुशी मनाई। सारे शहर विच जलूस कढ़िया जा रहे है। कबीर जी कबीर दे राम ने रखिया कीती। बादशाह नूं पता लगा हाली कबीर मरिया नहीं। फिर सिपाही भेजे ने सिपाहियां ने फड़ लिया। बादशाह कहिंदा ठीक है जे पानी विच नहीं मरिया इनू अग विच साड़ के मार दे। एक बड़ा वड्डा लकड़ां दा ढेर कठा कीता। कबीर साहब नू लकड़ां दे उत्ते बठा के उत्ते भी लकड़ां चिणन लग पए ने। चार छफेरे नंगियां तलवारां दा पहर है। ए समझदे ने कि कबीर कोई जादूगर है। कबीर साहब दे प्रेमी रोण लग पए ने पर कबीर साहब अडोल लकड़ां ते बैठे हुए अपने श्रद्धालुओं नूं की समझांदे ने।

आगे आप ही हवा। जे अकाल पुरख ने मेनू साड़ना है ते बचा कोई नहीं सकता है। जे उन्ने मेरी रखिया करनी ते फिर मेनू कोई साड़ नहीं सकता है।

अंदरलो दी दुनिया दा बादशाह अज नंगे पैर कबीर साहब दे आके चरना ते मथा टेकिया ते उपदेश मंगिया। कबीर साहब कहन लगे भाई अकाल पुरख ने बादशाही दिती ते ओदे बंदियां नू तंग ना कर, तू भी ओदा सिमरन कर, तेरा भी पार उतारा हो जाएगा। इस तरह जेड़े भी राम दी ओट लेंदे ने राम उन्हां दी रखिया।

आख्या क्यों महल माड़िया दे मगर लग्या, ये कोई नाल नहीं ले जा सकिया। बड़ी गल है जदों तू पंज पूतक शरीर त्यागेगा ता कोई दो गज कपड़ा तेरे ते पा देवेगा, बस इस तो बाद होर कुछ नहीं। क्योंकि कौडी कौडी जोड़े है, जोड़े लाख करोड़, चलती बार ना कुछ मिलियो ले लंगोटी तोड़। अगे शाहूकार जदों लंगोटी बनते सन ना ते लक विच सोने दी जंजीर पा के रखते सन, ते कबीर जी वेख रहे सन एक बड़ा सेठ जदों मरिया इसका शरीर अगन पेट करन लगे ते घर वालिया ने ओ लंगोटी भी तोड़ ली, ए सोने दी चैनी भाई किधर लै चले। इसलिए आख्या तेरे नाल कुछ नहीं जाना, ये सब इथे रह जाएगा, नाम दा धन तेरे नाल जावेगा। कबीर कोठे मंडप हेत कर काहे मरे सवार, कार्य साढ़े तीन हथ कनी तो पौने चार, बस इतनी कोई तेरी होंगे।